0: मान्छे हो कि को हो थाहा भएन, तर फिक्स चाहिँ गर्नुपर्थ्यो भनेर अनि फोटोहरू सबै पठाइहाल्नुपर्छ फिक्स भएपछि।
1: 尼泊尔登山界人士表示，在如此恶劣的条件下，在山上存活这么多天，简直是一个奇迹。
2: 您正在收看的是《朝闻天下》。绿水青山，就是金山银山。在湖州看见美丽中国。